0: और खबर मिली है कि दुनिया में लोग फार्ट बॉटल में खरीद रहे हैं।
1: क्या लोगों के पास पैसे ज्यादा है या दिमाग कम? मस्ती मैडनेस, जहां न्यूज भी होती है गैस्ट्रोनॉमिकल।
2: It's the best of Bollywood playing on Radio Masti 24/7 live. Have a masti bhara weekend.

0: इस वीकेंड वाज अ गाय,
1: वो आ गया, देखो वो आ गया।
0: इस वीकेंड वाज अ गर्ल, इस वीकेंड वाज अ फिल्मी डायलॉग,
2: स्वागत नहीं करोगे आप हमारा।
0: एंड इफ वीकेंड वाज एन ऐप,
3: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
4: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
5: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
6: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
0: How to make best of weekends that travel faster than light. Tune into our Musty Weekends on Radio Musty 24/7 Live, the perfect recipe for you to unwind, keeping body entertainment close to you, anywhere, anytime. Just

0: आदाब सत श्री अकाल गेम जय सिंगापुर सारू जय
1: नो टॉकिंग अलाउड सिर्फ म्यूजिक बोलेगा बैक टू बैक गाने ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर
3: चेक इट आउट
1: Best of Bollywood playing on Radio Masti 24/7 Live. Have a masti bhara weekend.

0: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
1: लाइफ थोड़ी बोरिंग लग रही है, टेंशन नहीं लेने का। टाइम फॉर योर थेरेपी सेशन, मस्ती का मंत्रा विद आरजे अंतरा, जहां न्यूज है फिल्मी, गॉसिप है स्पाइसी और म्यूजिक है फुल ऑन मस्त। बिकॉज हैप्पीनेस का असली मंत्र लाती है आरजे अंतरा, हर ट्यूसडे सुबह 7 बजे, ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7।
2: द परफेक्ट रेसिपी फॉर यू टू अनवाइंड, मस्ती वीकेंड्स ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।

0: सैटरडे नाइट का प्लान, पार्टी, कॉन्सर्ट या फिर भजन बैठक। जिनकी भजन बैठक में हजारों लोगों को एक साथ गाने सेलिब्रेट करने का एक नया एक्सपीरियंस दिया, जिनका जिक्र प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने मन की बात में किया, अब वो आ रहे हैं सिंगापुर। भजन जैमिंग विद बैकस्टेज सिब्लिंग्स राघव एंड प्राची। गाएंगे वो, गाएंगे आप सोलफुल भजन से सूफी और नॉस्टैल्जिक फेवरेट्स तक। 26 सितंबर, एंगेज थिएटर 2, सनटेक सिंगापुर। भजन जैमिंग विद बैकस्टेज सिब्लिंग्स। टिकट्स ऑन सिस्टिक, बुक नाउ। फॉर मोर डिटेल्स कॉल 9866-7144।
1: इट्स अ मस्ती पार्टनर इवेंट।
0: वीकेंड का मजा विद द बेस्ट ऑफ बॉलीवुड प्लेइंग ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।

0: इस वीकेंड वाज अ गाय,
1: वो आ गया, देखो वो आ गया।
0: इस वीकेंड वाज अ गर्ल, इस वीकेंड वाज अ फिल्मी डायलॉग,
2: स्वागत नहीं करोगे आप हमारा।
0: एंड इफ वीकेंड वाज एन ऐप,
3: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
4: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
5: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
6: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
0: How to make best of weekends that travel faster than light. Tune into a Musty Weekends on Radio Musty 24/7 Live, the perfect recipe for you to unwind, keeping body entertainment close to you, anywhere, anytime.

0: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
1: अगर हम सबकी जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। मस्ती मीडिया एकेडमी इज नाउ ओपन फॉर एडमिशंस। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for application form.
2: Namaste behno aur bhaiyo, main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.
3: Perfect recipe for you to unwind. Musty weekends only on Radio Musty 24/7 Live.

नमस्कार आदाब, मैं हूँ आपका दोस्त समर। और फिर वही सवाल, कैसे हैं? उम्मीद है बहुत खुश होंगे, आबाद होंगे और फुल मस्ती कर रहे होंगे। यदि ये सब नहीं कर रहे हैं तो आपको खुश करने के लिए हम मौजूद हैं। आखिर आपका दोस्त समर किस काम आएगा? वैसे आपको बताऊं, आज मैं जिस लेजेंड से आपको मिलवाने जा रहा हूं ना भाई, जिनके किस्से जिनकी कहानियां लेकर आया हूं आपके लिए, उनका नाम सुनने से ही आपके चेहरे पर मुस्कान आ जाएगी। गोल मटोल चेहरा और मदहोश कर देने वाली मुस्कान, जिसने अपने जमाने में न जाने कितने लोगों का दिल चुराया। हालांकि उनकी निजी जिंदगी बेहद उतार चढ़ाव भरी रही, लेकिन पर्दे पर हमने उन्हें हमेशा मुस्कुराते खिलखिलाते और खुशियां बिखेरते ही देखा। उनके बारे में आपको कुछ बताऊं, उसके लिए मैं एक काम करता हूं, ये वाला गाना प्ले कर देता हूं। ये छोटी सी क्लिप आप सुनेंगे तो इस क्लिप को सुनते ही आप समझ जाएंगे कि मैं किनकी बात कर रहा हूं। सुनिए।

सिंगापुर पुराने दौर में आज की तरह के मल्टीप्लेक्सेस नहीं हुआ करते थे, सिंगल स्क्रीन सिनेमा हॉल हुआ करते थे। और उस दौर में एक जोरदार ट्रेंड हुआ करता था कि जो गाना लोगों को पसंद आ जाता था, उस गाने के दौरान लोग पर्दे पर जमकर सिक्के फेंका करते थे। और ये एक ऐसा ही गाना था जिसमें सिनेमा हॉल वालों को टिकट के अलावा सिक्कों की भी कमाई हो जाती थी। और दर्शकों की फरमाइश पर यह गाना एक बार नहीं, दो तीन चार बार तक चलाया जाता था। आपको ये भी बता दूं कि इस फिल्म के हीरो थे राजेश खन्ना, जो उस दौर में सुपरस्टार थे, लेकिन लोग राजेश खन्ना से ज्यादा इस गाने के दीवाने थे। और उसका एक बड़ा कारण था लीना चंद्रावरकर की खूबसूरती। हालांकि इस फिल्म से पहले भी लीना जी कुछ फिल्में कर चुकी थी और इसके बाद भी उन्होंने कई फिल्में की, लेकिन इस गाने ने उन्हें एक अलग ही पहचान और मुकाम दिलाया है। लीना चंद्रावरकर के फिल्मी सफर और जिंदगी के बारे में बताने के लिए बहुत कुछ है मेरे पास, लेकिन वो सब मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले सुनिए उन्हीं पर पिक्चराइज ये कुछ बेहतरीन नगमे, आपके जहन में उनकी तस्वीर उभर कर आ जाएगी। और अगर आप मुझसे कुछ कहना चाहें तो हमारे फेसबुक पेज पर आकर कहें। फिलहाल ये गाने आपका इंतजार कर रहे हैं और इन गानों के बाद मैं समर आपका इंतजार कर रहा हूँ।

0: You're tuned into Radio Masti 24/7 Live, keeping the world Bollywood entertained anytime, anywhere.
1: Saturday night ka plan? Party? Concert? Ya phir bhajan baithak? जिनकी भजन बैठक में हजारों लोगों को एक साथ गाने सेलिब्रेट करने का एक नया एक्सपीरियंस दिया, जिनका जिक्र प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने मन की बात में किया, अब वो आ रहे हैं सिंगापुर। भजन जैमिंग विद बैकस्टेज सिब्लिंग्स राघव एंड प्राची। गाएंगे वो, गाएंगे आप, सोलफुल भजन से सूफी और नॉस्टैल्जिक फेवरेट्स तक। 26 September, Engage Theatre 2, Suntec, Singapore. Bhajan Jamming with Backstage Siblings. Tickets on Sistic. Book now. For more details, call 9866-7144.
2: It's a Masti Partner event.
3: Healthy khao, protein khao. Healthy khao, protein khao.
4: Don't miss exciting offers on healthy snacks and Crushable premium nuts at Velocity Novena Square, kiosk number 12, 11th to 25th September. Sham ki chai ho, office ka break ho, ya late night binge watching.
3: Healthy khao, protein khao. Healthy khao, protein khao.
4: Healthy munching ka perfect partner. Aap sirf ek click door.
5: GG.
4: Crushable nuts only on ggmartonline.com. Premium cashews, California almonds, pistachios, pumpkin seeds, makhana aur bhi bahut sare wholesome healthy options.
5: GG Mart, your personal grocer.
6: Sunte rahiye Legends phir se Samar ke saath.

आना चाहती थी। अब सोचिए सख्त मिजाज पिता और उस दौर में फिल्मों में आने की चाहत। जब भले घर की लड़कियों का फिल्मों में आना तो छोड़िए, फिल्में देखने जाना भी बहुत बड़ा गुनाह होता था। क्या हालत हुई होगी लीना जी की। लेकिन उन्होंने हिम्मत की और अपने पिता को अपनी इच्छा बता दी। लीना की इच्छा सुनकर पिता आग बबूला हो गए और जैसा लीना ने बताया था कि ये पहली बार था जब पिता ने उन पर हाथ भी उठा दिया था। इतने क्रोधित हो गए थे, इतना गुस्सा आ गया था उनको। हालांकि बाद में उन्हें अपनी गलती का एहसास भी हुआ और उन्होंने इसके लिए लीना से माफी भी मांग ली। बट यू नो एयर ऑफ 60s एंड टिपिकल इंडियन फैमिली वैल्यूज। खैर लीना की इच्छा पूरी हो गई और एक कॉम्पिटिशन में सिलेक्ट होने के बाद जब वो फिल्मी दुनिया में आई तो शुरुआत में उन्हें कुछ एडवर्टाइजमेंट्स में काम करना पड़ा। इसी दौरान सुनील दत्त साहब की नजर उन पर पड़ी और फिर क्या हुआ ये भाई मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा, अभी तो कहानी शुरू हुई है मेरे दोस्त। लीना चंद्रावरकर आज के हमारे लेजेंड, इनकी कहानी मैं आपको सुनाता रहूंगा लेकिन इन गानों के ब्रेक के बाद। मैं हूं समर, आप सुन रहे हैं रेडियो मस्ती, सिंगापुर और साउथ ईस्ट एशिया का एकमात्र लाइव हिंदी रेडियो सिंस 2009। लौटता हूं मैं।

0: पैदा है?
1: मैं पैदा हुआ जलंधर, मैं पैदा हुआ जलंधर।
0: पता
1: पता पता पूछ के करोगे क्या, पता पूछ के करोगे क्या, कभी बाहर हूँ कभी अंदर।

फिर न देना हो गई दिल की चोरी। करता हूँ जादू मंत्र मैं चालू हूँ एक नंबर, पता पूछ के करोगे क्या, पता पूछ के करोगे क्या। कभी बाहर हूँ कभी अंदर, कहते हैं मुझको राजा, मैं बजा

खाने पे मालिक की कम नजर है, सुबह खाया शाम की फिक्र है, अपने लिए रोने वाला कौन है, न घर वाली है ना कोई घर है। फिर भी हूँ मत जलंधर, ना हिटलर हूँ ना सिकंदर, पता पूछ के करोगे क्या, पता पूछ के करोगे क्या, कभी बाहर हूँ कभी अंदर, कहते हैं मुझको राजा, मैं बचा

बंदर हो जाऊंगा छुमंतर। डा डा डटे डटा डिटा पता पूछ के करोगे क्या, कभी बाहर हूँ कभी अंदर कहते।

मुझे नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत। मुझे याद है कि मैं आपसे क्या बात करने वाला था। मेरा नाम है समर और आप सुन रहे हैं रेडियो मसी 24/7 लाइव पर लेजेंड्स फिर से। आज हम बात कर रहे हैं महबूब की मेहंदी की महबूबा यानी कि लीना चंद्रावरकर जी की। और मुझे याद है कि इस मुलाकात से पहले मैं आपसे कह रहा था कि सुनील दत्त साहब से लीना जी की मुलाकात हो गई इंडस्ट्री में जब वो आई थी। तो दत्त साहब उन दिनों अपने भाई सोम दत्त को लॉन्च करने के लिए एक फिल्म बना रहे थे, मन का मीत। लीना उन्हें अच्छी लगी और उन्होंने इस फिल्म के लिए लीना जी को साइन कर लिया। लेकिन उस समय लीना जी बहुत छोटी थी, तो दत्त साहब ने अपनी पत्नी और बेहतरीन अदाकारा नरगिस जी को ये जिम्मेदारी सौंपी कि वो लीना को ग्रूम करें। तो नरगिस जी ने लीना को हिंदी, उर्दू बोलना, इंडियन और वेस्टर्न डांस करना और पर्दे पर खुद को प्रेजेंटेबल बनाना सिखाया। अब आप खुद अंदाजा लगा लीजिए कि जिसे नरगिस जी जैसी अदाकारा से ट्रेनिंग मिली हो वो क्या कमाल कर सकती है। अच्छा, इसी फिल्म के जरिए दत्त साहब ने विनोद खन्ना को भी लॉन्च किया था। हालांकि खन्ना एज अ विलेन लॉन्च हुए थे। तो हुआ ये कि फिल्मी दुनिया में लीना चंद्रावरकर और विनोद खन्ना को तो नोटिस कर लिया गया, लेकिन फिल्म के हीरो सोम दत्त साहब साइडलाइन हो गए। अब ये तो खैर होना ही था। तो इस तरह लीना चंद्रावरकर फिल्मी दुनिया को मिल गईं, लेकिन उनका करियर बहुत लंबा नहीं था। साल 1969 से 1979 तक ही उनका करियर चला, यानी सिर्फ 10 साल। हालांकि इस दौरान उन्होंने उस दौर के सभी बड़े स्टार्स जैसे धर्मपाजी, धर्मेंद्र साहब के साथ, राजेश खन्ना जी के साथ, जितेंद्र जी के साथ, शम्मी कपूर जी के साथ, महबूब और दिलीप कुमार साहब तक के साथ काम किया। दिलीप साहब के साथ लीना जी ने फिल्म बैराग में काम किया और ये फिल्म भी काफी चली थी। फिल्म में दिलीप कुमार साहब ट्रिपल रोल में थे और सायरा बानो भी इस फिल्म में उनकी एक हीरोइन थी। तो चलिए काम करते हैं। बैराग से मुझे याद आया कि उस फिल्म के गाने बहुत अच्छे थे और वैसे भी लीना जी पर पिक्चराइज गाने, तमाम गाने बहुत ही कमाल के, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो एक काम करता हूँ, उन्हीं कुछ गानों में से कुछ गाने आपको भी सुनवा देता हूँ। आज लीना चंद्रावरकर जी की बात हो रही है, उन्हीं के गाने आप तक पहुंचाए जा रहे हैं। कहां से? रेडियो मस्ती से। मैं कौन हूँ? मैं समर हूँ, सब कुछ बताता रहता हूँ आपको, मैं भूलने नहीं दूंगा, याद दिलाता रहूंगा। स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग रेडियो मस्ती। मैं लौटता हूँ।

0: आप सुन रहे हैं लेजेंड्स फिर से समर के साथ।
1: वेलकम बैक, मैं हूँ समर, रेडियो मसी 24/7 लाइव पर, और आप सुन रहे हैं लेजेंड्स फिर से। और आज मैं बात कर रहा हूँ सिंटिलेटिंग ब्यूटी लीना चंद्रावरकर जी की। अभी तक की कहानी में मैंने आपको बताया कि लीना चंद्रावरकर जी का फिल्मी सफर शुरू हो गया था। इस दौरान उन्होंने जितेंद्र के साथ हमजोली और बिदाई, संजीव कुमार साहब के साथ अनहोनी और मनचली, धर्मेंद्र के साथ रखवाला, राजेश खन्ना के साथ महबूब की मेहंदी जैसी कई हिट फिल्में दे दी थी। अब तक सब कुछ अच्छा चल रहा था। इसी दौरान उन्हें प्यार हुआ सिद्धार्थ बांदोडकर से। सिद्धार्थ गोवा के राजनीतिक परिवार से आते थे। उनके पिता गोवा के पहले मुख्यमंत्री दयानंद बांदोडकर थे। तो फिल्म बिदाई के साथ ही लीना ने भी फिल्मों से बिदाई ले ली और सिद्धार्थ के साथ शादी कर ली। बस यहीं से लीना की जिंदगी में उन उतार चढ़ावों की शुरुआत हुई जिन्होंने उन्हें जिंदगी के बारे में बहुत कुछ सिखाया। एक हंसती खिलखिलाती लड़की एक मैच्योर और जिम्मेदार लड़की में तब्दील हो गई। आखिर क्या हुआ लीना चंद्रावरकर की जिंदगी में और कैसे सब कुछ बदल गया, इस बारे में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन पहले सुनिए उन्हीं पर पिक्चराइज ये बेहतरीन गाना। रेडियो मजी 24/7 लाइव पर समर के साथ हैं आप।

0: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
1: अगर हम सबकी जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। मस्ती मीडिया अकेडमी इज नाउ ओपन फॉर एडमिशंस। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for application form.
2: Namaste behno aur bhaiyo, main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.

0: सुनते रहिए लेजेंड्स फिर से समर के साथ।
1: वेलकम बैक समर के साथ रेडियो मसी 24/7 लाइव पर आप सुन रहे हैं लेजेंड्स फिर से। आज मैं आपको लीना चंद्रावरकर जी की कहानी सुना रहा हूँ। मैंने आपको बताया कि सिद्धार्थ बांदोडकर के साथ लीना जी ने एक प्रेम कहानी की शुरुआत के साथ साथ प्रेम विवाह भी कर लिया। शादी में तब्दील हो गया उनका ये बेहद खूबसूरत प्यार, लेकिन शादी के 11वें दिन ही, सिर्फ 11th डे ही, अपनी रिवॉल्वर साफ करते हुए सिद्धार्थ को गोली लग गई और वो गंभीर रूप से घायल हो गए। खून से लथपथ सिद्धार्थ को अस्पताल ले जाया गया, जहां करीब 6 महीने उन्होंने अस्पताल में बिताए और इस दौरान लीना ने उनकी खूब सेवा की, यहां तक कि डॉक्टर्स उन्हें सावित्री तक कहने लगे थे। लीना अपने बच्चे की तरह सिद्धार्थ का ध्यान रखती थी। सिद्धार्थ अपनी माँ को आई कहते थे और लीना चंद्रावरकर को मामा कहकर बुलाते थे, इतना ध्यान रखती थी लीना। लेकिन लीना की सेवा और देखभाल काम नहीं आई और शादी के सिर्फ 11 महीने बाद ही सिद्धार्थ की मौत हो गई। सिद्धार्थ से पहले उनकी मां ने 7 लड़कों को जन्म दिया था, लेकिन कोई भी जिंदा नहीं बच पाया और सिद्धार्थ भी बहुत जल्द इस दुनिया से चले गए। उनकी मौत के बाद लीना इतना टूट गई कि उन्हें संभालना मुश्किल हो गया। उनके माता पिता उन्हें धारवाड़ वापस ले आए, लेकिन वो वहां भी संभल नहीं पाई और आखिरकार कुछ समय बाद अपने प्रोजेक्ट पूरे करने के लिए वो मुंबई लौट आई। फिर क्या हुआ और कैसे किशोर कुमार से उनकी किस्मत जुड़ी, ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। पहले सुनिए ये गाने।

वेलकम बैक समर, एक बार फिर से दोनों बाहें भला कर आपका स्वागत कर रहा है। आप सुन रहे हैं सिंगापुर और साउथ ईस्ट एशिया का एकमात्र लाइव हिंदी रेडियो सिंस 2009 रेडियो मस्ती, और आज मैं आपको लीना चंद्रावरकर की कहानी सुना रहा हूँ। सिद्धार्थ की मौत से मिले सदमे से उबरने के लिए लीना मुंबई आ गई एक बार फिर से फिल्मों में काम करने के लिए। फिल्मों में काम उन्होंने शुरू कर दिया, हालांकि इस दूसरी बारी में उन्हें कोई बहुत बड़ी और अच्छी फिल्में नहीं मिली। लेकिन इसी दौरान गायक अभिनेता किशोर कुमार उनके संपर्क में आए और उनका सहारा बन गए। किशोर और लीना की कहानी पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक रोचक वाकया सुनाता हूँ। एक इंटरव्यू में खुद लीना जी ने यह किस्सा सुनाया था। तो हुआ यूं था कि सिद्धार्थ और लीना एक दिन लोनावला में कहीं थे। इसी दौरान किशोर कुमार अपनी पत्नी योगिता वाली के साथ उन्हें वहां दिखे। उन्हें देखकर सिद्धार्थ ने लीना को छेड़ते हुए यूं ही पूछ लिया कि कभी किशोर कुमार ने तुम्हें शादी के लिए प्रपोज किया तो क्या करोगी तुम, हाँ कर दोगी? लीना ने कहा, नेवर, कभी नहीं, वो तीन तीन शादी कर चुके हैं, मैं उनके प्रपोजल पर हाँ करूंगी, कैसी बात करते हो। लेकिन तब लीना को क्या पता था कि एक दिन किशोर कुमार ही उनकी जिंदगी में आएंगे और उन्हें प्रपोज भी करेंगे और वो मना भी नहीं कर पाएंगी। किस्मत के खेल निराले होते हैं। ये कहानी एकदम फिल्मी लग रही है ना आपको? भाई ऐसे होता है जिंदगी में, आप सोचते क्या है और हो क्या जाता है। बहरहाल किशोर कुमार और लीना चंद्रावरकर की कहानी कैसे आगे बढ़ी ये जानेंगे इन गानों के बाद। आप सुनते रहेगा रेडियो मस्ती पर समर के साथ लेजेंड्स फिर से।

Got something amazing to sell, serve or showcase? Then don't just visit the Festive Bazaar 2026. Be a part of it. Mountbatten CC IAEC presents Festive Bazaar 2026 and stall bookings are now open. Fashion, food, gifts, handicrafts, something unique. Showcase your business to the community. Plus, live performances, kids' activities, joyrides and lucky draws. All to keep the festive buzz going all day. 27th September, 10 a.m. to 6 p.m. Mountbatten CC Multipurpose Hall. Limited stalls available. Book yours now. For inquiries, call 8330-2518. Festive Bazaar 2026, where shopping, food and community come together. Saturday night ka plan? Party? Concert? Ya phir? Bhajan Baithak. जिनकी भजन बैठक में हजारों लोगों को एक साथ गाने सेलिब्रेट करने का एक नया एक्सपीरियंस दिया, जिनका जिक्र प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने मन की बात में किया, अब वो आ रहे हैं सिंगापुर। भजन जैमिंग विद बैकस्टेज सिब्लिंग्स राघव एंड प्राची। गाएंगे वो, गाएंगे आप, सोलफुल भजन से सूफी और नॉस्टैल्जिक फेवरेट्स तक। 26 September, Engage Theatre 2, Suntec, Singapore. Bhajan Jamming with Backstage Siblings. Tickets on Sistic. Book now. For more details, call 9866-71.

0: असल में किशोर कुमार लीना चंद्रावरकर की खूबसूरती पर जमकर फिदा हो गए थे और उनसे मिलने के बहाने ढूंढा करते थे। वो चाहते थे कि लीना उनके साथ एक फिल्म करें और इसी बहाने वो लीना के और करीब आ जाएं। तो किशोर कुमार साहब ने 3 स्क्रिप्ट्स तैयार कर रखी थी और इन्हें सुनाने के बहाने ही वो लीना जी से मिलने के लिए आ जाया करते थे। इसी दौरान उन्होंने एक दिन लीना चंद्रावरकर को प्रपोज कर दिया। लीना जी ने किशोर कुमार को सख्त लहजे में मना कर दिया, लेकिन किशोर कुमार ने बुरा नहीं माना और कहा कि चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ ये फिल्म करना चाहता हूँ। लीना जी ने किशोर कुमार की फिल्म प्यार अजनबी साइन कर ली। फिल्म के दौरान ही किशोर कुमार के बारे में लीना जी की सोच बदल गई और उन्होंने पाया कि किशोर कुमार के बारे में उन्होंने जो कुछ सुन रखा था वो सब गलत था। बहरहाल बाद में वो शादी के लिए राजी हो गई। अब ये सब कैसे हुआ ये आप सुनिए खुद लीना जी की आवाज में।
1: एक फिल्म के लिए मुझे अप्रोच किया था, प्यार अजनबी है, पहले मैंने नाक कर दी, फिर वो कहने लगे नहीं नहीं प्लीज तुम बाहर मत काम करना, लेकिन ये रोल बहुत अच्छा है करो, और उन्होंने मना लिया। अब बाद में ये हुआ कि घर वाले नहीं चाहते थे कि मैं काम करूं, तो ऐसे भी अरेंज मैच उन्होंने देखे थे, फोटोग्राफ्स दिखाते थे, मैं देखती नहीं थी क्योंकि पहला जो दुख था मेरे मन में वो एक ट्रेजिडी मेरे साथ हो चुकी थी। तो उस समय मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी, लेकिन एक जिस तरह जादूगर, कोई जादूगर कैसे जादू की छड़ी घुमा देता है, या फिर एक फरिश्ते की तरह उन्होंने मेरी ज़िंदगी को बदल दिया। उन्होंने मुझे हंसना सिखाया, एक्चुअली मैं भूल गई थी सब कुछ, रोना भी भूल गई थी क्योंकि इतना रोई थी कि आंसू ख़त्म हो चुके थे। अब ये हुआ कि वो कहते थे कि देखो, अब हाँ ये करते करते उन बाद में उन्होंने मुझे बताया जब हमारी शादी हो गई और उसके बाद वो कहते थे कि ये बीवी बड़ी महंगी पड़ी मुझे। मैंने कहा इसका क्या मतलब है? तो बोलते मुझे फिल्म बनानी पड़ी, और मैं इतनी जल्दी बोलता भी नहीं शायद उन्होंने जब मुझे प्रपोज किया तो मैं नाराज़ हो गई। मैंने कहा आप ऐसे कैसे जिसके साथ आप काम करते हैं उनके साथ आप शादी करते हैं, तो शादी का क्या मतलब है आपके, मतलब आप इसको सीरियसली नहीं लेते? तो कहने लगे नहीं वो बात नहीं है, कैंसिल कर दो, मतलब सुन के कैंसिल करो। पहले ही कहा था उन्होंने हम अगस्त वालों को शादी नहीं करनी चाहिए, लेकिन अगर तुम सोचो कभी तो मेरा प्रपोजल पहले।
0: तो ये कहानी अब जल पड़ी थी और लीना जी ने शादी के लिए हाँ भी कर दी थी। कहानी आगे बढ़ेगी हमारी भी इन गानों के बाद। आप सुनते रहिए समर के साथ लेजेंड्स फिर से। आज लीना चंद्रावरकर स्पेशल है ये।

0: खाओ।
1: Don't miss exciting offers on healthy snacks and Crushable premium nuts at Velocity Novena Square, kiosk number 12, 11th to 25th September. शाम की चाय हो, ऑफिस का ब्रेक हो, या लेट नाइट बिंज वॉचिंग,
0: हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ, हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ।
1: हेल्दी मंचिंग का परफेक्ट पार्टनर अब सिर्फ एक क्लिक दूर।
2: जीजी
1: Crushable nuts only on GGMartOnline.com. Premium cashews, California almonds, pistachios, pumpkin seeds, makhana और भी बहुत सारे wholesome healthy options.
2: GGMart, your personal grocer.

0: आप सुन रहे हैं लेजेंड्स फिर से समर के साथ।
1: वेलकम बैक। अभी थोड़ी देर पहले लीना जी का एक इंटरव्यू का टुकड़ा हमने आपको सुनाया था, और अगर आपने बीच में से हमारा शो सुनना शुरू किया है तो आपको अंदाजा लग गया होगा कि आज हम बात कर रहे हैं लीना चंद्रावरकर की। हम बोले तो मैं समर रेडियो मसी 24/7 लाइव पर एक बार फिर से दोनों भाई भला कर रहा हूं आपका इस्तकबाल स्वागत। तो चलिए लीना जी की कहानी को आगे बढ़ाते हैं। वैसे कहानी उनकी कम मजेदार नहीं है। दरअसल लीना जी के पिता इस शादी के लिए राजी नहीं थे। अब कौन सी शादी भाई? किशोर कुमार साहब के साथ जो उनकी दूसरी शादी होने वाली थी उसके लिए। तो किशोर कुमार शादी के बाद लीना जी के साथ अपने ससुराल गए। वहां जब पहुंचे तो उनका स्वागत बहुत अच्छी तरीके से हुआ। भाई एक नए नए दामाद साहब थे, ससुराल आए थे, बहुत अच्छे से उनकी खातिर तवज्जो की गई, बहुत ध्यान रखा गया उनका। लेकिन नाराजगी उनकी, मतलब ससुर जी की नाराजगी कायम थी। तो किशोर कुमार ने वहां अपनी महफिल जमाई अपने स्टाइल में, अपने तरीके से, और ससुर जी को खुश करने के लिए कौन कौन से गाने नहीं सुनाए साहब। उनमें एक गाना और था, नफरत करने वालों के सीने में प्यार भर दूं। आहा क्या गाना था। तो ये गाना भी उन्होंने वहां पर गाकर सुनाया, और अपने ससुर जी के दिल में जो थोड़ी सी नफरत के दाग उन्हें दिखाई दे रहे थे उन्हें उन्होंने धो डाला, साफ कर दिया। लेकिन क्या ऐसा हुआ? क्या हुआ इस गाने को सुनाने के बाद? कहानी में सस्पेंस आ गया ना। इस कहानी को मैं एक काम करता हूँ, कुछ गानों के बाद सुनाता हूँ, बड़ा मजा आएगा। लीना चंद्रावरकर जी की कहानी आप सुन रहे हैं समर की जुबानी रेडियो मस्ती पर। लौटूंगा तो मैं बताऊंगा कि नफरत करने वालों के सीने में प्यार भर दूं गाना गाने के बाद किशोर कुमार साहब की ससुर जी का क्या हाल हुआ। स्टे कनेक्टेड।

0: Got something amazing to sell, serve or showcase? Then don't just visit the Festive Bazaar 2026. Be a part of it. Mountbatten CC IAEC presents Festive Bazaar 2026 and stall bookings are now open. Fashion, food, gifts, handicrafts, something unique? Showcase your business to the community. Plus, live performances, kids' activities, joyrides and lucky draws, all to keep the festive buzz going all day. 27th September, 10 a.m. to 6 p.m. Mountbatten CC Multipurpose Hall. Limited stalls available. Book yours now. For inquiries, call 8330-2518. Festive Bazaar 2026, where shopping, food and community come together. Sunte rahiye Legends phir se Summer ke saath.
1: वेलकम बैक समर के साथ, आप रेडियो 24/7 लाइव पर सुन रहे हैं लेजेंड्स फिर से। और आज हम बात कर रहे हैं लीना चंद्रावरकर जी की। लीना जी ने दूसरी शादी कर ली किशोर कुमार से, या यूं कहूं कि किशोर कुमार जी ने एक और शादी कर ली लीना जी से, क्योंकि लीना जी शुरू में नहीं चाहती थी कि वो किशोर कुमार से शादी करें। लेकिन जब उन्होंने प्रपोज किया था तब तो उन्होंने मना कर दिया। फिर बाद में उन्हें लगा कि किशोर कुमार उतने बड़े आदमी है नहीं, इनके साथ जिंदगी जी जा सकती है, तो साहब उन्होंने हाँ कर दी और शादी भी कर ली। लेकिन पिताजी नाराज हो गए। पिताजी को मनाने के लिए ससुराल पहुंच गए दोनों के दोनों धारवाड़, और वहां पर जाकर किशोर कुमार ने अपनी एक महफिल सजाई और एक गाना गाया, नफरत करने वालों के सीने में प्यार भर दूं ससुर जी का दिल ताकि पिघल जाए साहब। ससुर जी ने यह गाना सुना और उनका दिल वाकई पसीज गया। उन्होंने किशोर कुमार को गले लगाकर कहा कि तुम्हारी आवाज ने मेरे दिल को छू लिया है, मुझे पूरा यकीन है कि तुम मेरी बेटी को खुश रखोगे। खैर, लीना के फादर तो राजी हो गए साहब, लेकिन सब कुछ इतना आसान नहीं था। लीना को एक और जगह से इस शादी की मंजूरी लेनी पड़ी, जहाँ किशोर कुमार के बेटे अमित कुमार से। दरअसल अमित कुमार किशोर कुमार की पहली पत्नी के बेटे हैं और लीना चंद्रावरकर से उम्र में 2 साल बड़े हैं। वैसे भी किशोर कुमार और लीना जी में ही 21 साल का अंतर था। बहरहाल अमित जी शुरुआत में तो राजी नहीं हुए थे, लेकिन आज वो लीना जी की बहुत बड़ी हिम्मत है। आपको बता दूं कि लीना जी अपने दोनों बेटों के साथ, उनके परिवारों के साथ एक साथ रहती हैं। फिल्मी दुनिया में बहुत कम देखने को मिलता है। खैर, किशोर कुमार जी लीना के लिए क्या थे, उनके बीच ये रिश्ता कैसा था, क्या था, ये भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले कुछ और गाने लीना चंद्रावरकर पर पिक्चराइज, आप ये सुनिए, वापस आइए, समर के साथ हैं आप, ये मत भूल जाइए। ये लेजेंड्स फिर से रेडियो मसी 24/7 लाइव पर। कीप लिसनिंग।

0: आप सुन रहे हैं लेजेंड्स फिर से समर के साथ।
1: वेलकम बैक समर के साथ। आज आप सुन रहे हैं लीना चंद्रावरकर जी की कहानी। रेडियो मस्ती सिंगापुर और साउथ ईस्ट एशिया का एकमात्र लाइव हिंदी रेडियो सिंस 2009, जहां पर समर आपसे मुखातिब है लेकर लेजेंड्स फिर से। और लीना चंद्रावरकर जी की कहानी आज आप तक मैं पहुंचा रहा हूं। वक्त अभी मेरे जाने का, लेकिन मैंने आपसे जो वादा किया था कि किशोर कुमार और लीना जी के बीच में कैसा रिश्ता था, ये आपको बताऊंगा। लीना जी किशोर कुमार से उम्र में बहुत छोटी थी, 20 साल, और शायद यही वजह है कि लीना जी के मन में उनके प्रति बहुत आदर था। वैसे किशोर कुमार साहब इंसान भी कमाल थे। लीना जी ने एक इंटरव्यू में बताया था कि धारवाड़ जब हम दोनों साथ गए थे पिताजी को मनाने, तो वहाँ कमरे में उनके पहले पति सिद्धार्थ का फोटो लगा हुआ था। मेरी माँ वो फोटो ले जाने लगी तो किशोर कुमार ने पूछा कि वो फोटो कहाँ ले जा रही हैं आप। माँ ने कहा अब इस फोटो को यहाँ नहीं रहना चाहिए। किशोर कुमार साहब ने कहा क्या आप लीना के मन से सिद्धार्थ को निकाल सकती हैं, ये तो नहीं हो सकता ना, इसलिए इस फोटो को भी यहीं रहने दीजिए। बस इसके बाद तो दोनों के रिलेशनशिप के अलग ही मायने हो गए। तो दोस्तों ये रहा लीना चंद्रावरकर का सफर, जिसे मैं यहाँ पर एक विराम दे रहा हूँ और आपको छोड़े जा रहा हूँ उनके कुछ और बेहतरीन नगमों के साथ। जाने का वक्त है और एक नई शख्सियत से आपको मिलाने का वादा मैं करके जा रहा हूँ, लेकिन आप याद रखिएगा क्या, अरे वही जो आपसे कहता हूँ, इन्हें आप आजमाइएगा भी। क्या करेंगे आप रखेंगे अपना ख्याल, अपने अपनों का ख्याल, अपने आसपास के लोगों का और चीजों का ख्याल। किसी के दिल में मोहब्बत बनकर बस जाएंगे, किसी के चेहरे पर मुस्कान बनकर सज जाएंगे और कुछ ऐसा कर जाएंगे कि लोग आपको याद करें। याद मुझे भी रखिएगा। मेरा नाम है समर, आपसे मिलूंगा यहीं पर। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार, टेक केयर।

0: इस वीकेंड वाज अ गाय,
1: वो आ गया, देखो वो आ गया।
0: इस वीकेंड वाज अ गर्ल, इस वीकेंड वाज अ फिल्मी डायलॉग,
2: स्वागत नहीं करोगे आप हमारा।
0: एंड इफ वीकेंड वाज एन ऐप,
3: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
4: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
5: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
6: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
0: How to make best of weekends that travel faster than light. Tune into our Musty Weekends on Radio Musty 24/7 Live, the perfect recipe for you to unwind, keeping body entertainment close to you, anywhere, anytime. Just

0: बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
1: छोटी छोटी बातें छोड़ो और बड़े बड़े हिट सुनो। आपके रिक्वेस्ट सी बनाएंगे शो का ब्लॉकबस्टर प्लेलिस्ट। रोमांटिक, फिल्मी, पार्टी वाइब्स सब मिलेगा यही के यही। व्हाट्सएप करिए हमारे ऐप के थ्रू या फिर डायरेक्ट सिंगापुर नंबर 9151896 पर। मस्ती वॉइस आपकी चॉइस।
2: ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर।
3: चेक इट आउट।
1: It's the best of Bollywood playing on Radio Masti 24/7 Live. Have a masti bhara weekend.

0: किसी ने उसे मोहब्बत कहा, किसी ने इबादत और किसी ने सुकून। हमने उसे कहा इश्क सूफियाना। दो यादगार एडिशन्स के बाद परम स्वरम परफॉर्मिंग आर्ट्स लेकर आए हैं इश्क सूफियाना एडिशन 3 बाय सिंगापुर रेनाउंड आर्टिस्ट अमित धमेलिया। 26 सितंबर 7 पीएम ऑनवर्ड्स सीएससी ऑडिटोरियम टू सेंसन रोड। टिकट $60 ऑनवर्ड्स। कॉन्टैक्ट एंड पे नाउ 8138279 0। इश्क सूफियाना, इश्क सूफियाना बाय अमित धमेलिया।
1: It's a musty partner event.
0: The perfect recipe for you to unwind. Musty weekends only on Radio Musty 24/7 Live.

0: इफ वीकेंड वाज अ गाय,
1: वो आ गया, देखो वो आ गया।
0: इफ वीकेंड वाज अ गर्ल, इफ वीकेंड वाज अ फिल्मी डायलॉग,
2: स्वागत नहीं करोगे आप हमारा।
0: एंड इफ वीकेंड वाज एन ऐप,
3: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
4: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
5: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
6: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
0: How to make best of weekends that travel faster than light. Tune into our Musty Weekends on Radio Musty 24/7 Live, the perfect recipe for you to unwind, keeping body entertainment close to you, anywhere, anytime. Josh

0: जब एक धुन से सांस का पता चल जाता था, जब एक मिस्ड कॉल से आवाज का पता चल जाता था, घिसी हुई वीडियो टेप्स पर बनी हमारी क्रिस्टल क्लियर यादें, समोसा पैटीज, फूटी लिमका, फ्लेम्स से लेकर स्लैम बुक्स तक, झूठी बॉटल से कोल्ड ड्रिंक पीने को इनडायरेक्ट किस समझने वाले दिन, योर डोज ऑफ 90s नॉस्टैल्जिया, मस्ती 90s मिक्सटेप विद आपकी 90s वाली अंतरा, थर्सडेज 11 AM ऑनवर्ड्स ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव.
1: It's the best of Bollywood playing on Radio Masti 24/7 live. Have a masti bhara weekend.

0: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
1: लाइफ थोड़ी बोरिंग लग रही है, टेंशन नहीं लेने का। टाइम फॉर योर थेरेपी सेशन, मस्ती का मंत्रा विद आरजे अंतरा, जहां न्यूज है फिल्मी, गॉसिप है स्पाइसी और म्यूजिक है फुल ऑन मस्त। बिकॉज हैप्पीनेस का असली मंत्रा लाती है आरजे अंतरा, हर ट्यूसडे सुबह 7 बजे ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7।
2: द परफेक्ट रेसिपी फॉर यू टू अनवाइंड, मस्ती वीकेंड्स ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।

0: इफ वीकेंड वाज अ गाय,
1: वो आ गया, देखो वो आ गया।
0: इफ वीकेंड वाज अ गर्ल, इफ वीकेंड वाज अ फिल्मी डायलॉग,
2: स्वागत नहीं करोगे आप हमारा।
0: एंड इफ वीकेंड वाज एन ऐप,
3: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
4: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
5: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
6: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
0: How to make best of weekends that travel faster than light. Tune into a Musty Weekends on Radio Musty 24/7 Live, the perfect recipe for you to unwind, keeping body entertainment close to you, anywhere, anytime.

0: नाचने का मन है?
1: मेरा भी। आपके रिक्वेस्ट ही बनाएंगे शो को फुल ऑन पार्टी। व्हाट्सएप करिए हमारे ऐप के थ्रू या फिर डायरेक्ट सिंगापुर नंबर 9151896 3 पर। मस्ती वॉइस आपकी चॉइस।
2: Only on Radio Musti 24/7 Live, a part of Musti Media Network Singapore. Check it out.
3: It's the best of Bollywood playing on Radio Musti 24/7 Live. Have a musti bhara weekend.

0: का पुरुष ही नहीं, महापुरुष है, महापुरुष।
1: वेंसडे को मूड डाउन हो गया, कोई बात नहीं, हमारे पास उसका भी जुगाड़ है, मिडवीक ब्लू, जहां काम की चिंता छोड़ो और हमारे साथ मस्त हो जाओ। फिल्मी बातें, मस्ती मोमेंट्स, थोड़ा छेड़ना और पंगे लेना भी, क्योंकि लाइफ सिर्फ काम के लिए नहीं है मेरे दोस्त। ट्यून इन एंड पावर थ्रू द वीक विद मिडवीक ब्लूज ऑन रेडियो मस्ती 24/7। आओ मूड चेंज करें।
2: द परफेक्ट रेसिपी फॉर यू टू अनवाइंड। मस्ती वीकेंड्स ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।

0: इफ वीकेंड वाज अ गाय,
1: वो आ गया, देखो वो आ गया।
0: इफ वीकेंड वाज अ गर्ल, इफ वीकेंड वाज अ फिल्मी डायलॉग,
2: स्वागत नहीं करोगे आप हमारा।
0: एंड इफ वीकेंड वाज एन ऐप,
3: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
4: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
5: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
6: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
0: How to make best of weekends that travel faster than light. Tune into a Musty Weekends on Radio Musty 24/7 Live, the perfect recipe for you to unwind, keeping body entertainment close to you, anywhere, anytime.

Yo yo honey singer. चलती रहेगी आज सारी रात दारू, तुम बोतलें तैयार कर लो पीने के लिए कोई बात।

0: किसी ने उसे मोहब्बत कहा, किसी ने इबादत और किसी ने सुकून। हमने उसे कहा इश्क सूफियाना। दो यादगार एडिशंस के बाद परम स्वरम परफॉर्मिंग आर्ट्स लेकर आए हैं इश्क सूफियाना एडिशन 3 बाय सिंगापुर रेनाउंड आर्टिस्ट अमित धमेलिया। 26 सितंबर 7 पीएम ऑनवर्ड सीएससी ऑडिटोरियम टू सेंसन रोड। टिकट $60 ऑनवर्ड्स। कॉन्टैक्ट एंड पे नाउ 8138279 0। इश्क सूफियाना बाय अमित धमेलिया।
1: It's a musty partner event.
2: नाचने का मन है मेरा भी। आपके रिक्वेस्ट ही बनाएंगे शो को फुल ऑन पार्टी। व्हाट्सएप करिए हमारे ऐप के थ्रू या फिर डायरेक्ट सिंगापुर नंबर 9151896 3 पर। मस्ती वॉइस आपकी चॉइस।
3: Only on Radio Musty 24/7 Live, a part of Musty Media Network Singapore.
4: Check it out.
5: The best of Bollywood playing on Radio Masti 24/7 Live. Have a masti bhara weekend.

जाने क्या मोड़ आया, सिरहाने को छोड़ आया, तोड़ आया ख्वाब किसी का, जाने क्या छोड़ आया, जाने क्या।

0: इफ वीकेंड वाज अ गाय,
1: वो आ गया, देखो वो आ गया।
0: इफ वीकेंड वाज अ गर्ल, इफ वीकेंड वाज अ फिल्मी डायलॉग,
2: स्वागत नहीं करोगे आप हमारा।
0: एंड इफ वीकेंड वाज एन ऐप,
3: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
4: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
5: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
6: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
0: How to make best of weekends that travel faster than light. Tune into our Musty Weekends on Radio Musty 24/7 Live, the perfect recipe for you to unwind, keeping body entertainment close to you, anywhere, anytime.

0: किसी ने उसे मोहब्बत कहा, किसी ने इबादत और किसी ने सुकून। हमने उसे कहा इश्क सूफियाना। दो यादगार एडिशंस के बाद परम स्वरम परफॉर्मिंग आर्ट्स लेकर आए हैं इश्क सूफियाना एडिशन 3 बाय सिंगापुर रेनाउंड आर्टिस्ट अमित धमेलिया। 26 सितंबर 7 पीएम ऑनवर्ड्स सीएससी ऑडिटोरियम टिसेंसन रोड। टिकट $60 ऑनवर्ड्स। कॉन्टैक्ट एंड पे नाउ 8138279 0। इश्क सूफियाना, इश्क सूफियाना बाय अमित धमेलिया।
1: मस्ती पार्टनर इवेंट।
2: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
3: अगर हम सब की जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। मस्ती मीडिया एकेडमी इज नाउ ओपन फॉर एडमिशंस। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for application form.
4: Namaste behno aur bhaiyo, main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.
0: Perfect recipe for you to unwind. Musty weekends only on Radio Musty 24/7 Live.

0: सैटरडे नाइट का प्लान, पार्टी, कॉन्सर्ट या फिर भजन बैठक। जिनकी भजन बैठक में हजारों लोगों को एक साथ गाने सेलिब्रेट करने का एक नया एक्सपीरियंस दिया, जिनका जिक्र प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने मन की बात में किया, अब वो आ रहे हैं सिंगापुर। भजन जैमिंग विद बैकस्टेज सिब्लिंग्स राघव एंड प्राची। गाएंगे वो, गाएंगे आप, सोलफुल भजन से सूफी और नॉस्टैल्जिक फेवरेट्स तक। 26 सितंबर, एंगेज थिएटर 2, सनटेक सिंगापुर। भजन जैमिंग विद बैकस्टेज सिब्लिंग्स। टिकट्स ऑन सिस्टिक, बुक नाउ। फॉर मोर डिटेल्स कॉल 9866-7144।
1: इट्स अ मस्ती पार्टनर इवेंट।
0: इट्स द बेस्ट ऑफ बॉलीवुड प्लेइंग ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। हैव अ मस्ती भरा वीकेंड।

0: अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं? मस्ती मीडिया अकेडमी इज नाउ ओपन फॉर एडमिशंस. That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for application form.
1: Namaste behno aur bhaiyo, main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.
2: हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ, हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ.
3: Don't miss exciting offers on healthy snacks and Krishival premium nuts at Velocity Novena Square, kiosk number 12, 11th to 25th September. शाम की चाय हो, ऑफिस का ब्रेक हो, या late night binge watching.
2: हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ, हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ.
3: हेल्दी मंचिंग का परफेक्ट पार्टनर आप सिर्फ एक क्लिक दूर.
4: जीजी
3: Krishival nuts only on ggmartonline.com. Premium cashews, California almonds, pistachios, pumpkin seeds, makhana. और भी बहुत सारे होलसम हेल्दी ऑप्शंस.
4: जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर.

0: इफ वीकेंड वाज अ गाय,
1: वो आ गया, देखो वो आ गया।
0: इफ वीकेंड वाज अ गर्ल, इफ वीकेंड वाज अ फिल्मी डायलॉग,
2: स्वागत नहीं करोगे आप हमारा।
0: एंड इफ वीकेंड वाज एन ऐप,
3: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
4: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
5: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
6: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
0: How to make best of weekends that travel faster than light. Tune into our Musty Weekends on Radio Musty 24/7 Live, the perfect recipe for you to unwind, keeping body entertainment close to you, anywhere, anytime.

0: perfect recipe for you to unwind. Musti Weekends only on Radio Musti 24/7 Live.
1: मोहब्बत क्या है?
2: मोहब्बत मोहब्बत जिंदगी है.
3: मोहब्बत क्या है? क्यों है? कहाँ है?
2: मेरा विश्वास है कि भगवान ने सारे दिल के रिश्ते पहले से ही जोड़ दिए हैं, बस उनका मिलना हम पे छोड़ दिया है. उसने हम सबको जोड़ियों में बनाया है और हर एक के लिए कोई एक जीवन साथी है.
3: जीवन साथी? क्या बकवास है, मैं इन सब बातों को नहीं मानता.
2: मुझे तो पूरा भरोसा है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई मेरे लिए बनाया गया है और कभी ना कभी मैं उससे जरूर मिलूंगी.
3: अच्छा अच्छा अच्छा, लेकिन मुझे कोई बताएगा प्लीज कि मुझे कैसे मालूम पड़ेगा कि मेरे लिए कौन बनाया गया? मेरा मतलब क्या वो मेरे नाम का बोर्ड लेकर घूम रही होगी?

0: सुबह की शुरुआत हो थोड़ी सी न्यूज के साथ, थोड़ी सी गॉसिप के साथ और बहुत सारी मस्ती के साथ। क्योंकि जब ट्यूसडे आता है ना, तो आती है आरजे अंतरा की बातों की बारिश। Your daily scoop of what's hot, what's viral and what's worth knowing. Served fresh with great music and my unbeatable charm, you see. Tune in to me on Masti Ka Mantra with RJ Antara. Har Tuesday subah 7 baje, sirf Radio Masti, 24/7 live fan.
1: The perfect recipe for you to unwind. Masti Weekends only on Radio Masti, 24/7 live.

0: और खबर मिली है कि दुनिया में लोग फार्ट बॉटल में खरीद रहे हैं।
1: क्या लोगों के पास पैसे ज्यादा है या दिमाग कम? मस्ती मैडनेस, जहां न्यूज भी होती है गैस्ट्रोनॉमिकल।
2: It's the best of Bollywood playing on Radio Masti 24/7 live. Have a masti bhara weekend.

0: जो चौका उड़ते हुए जाए उसे छक्का कहते हैं।
1: वीकेंड का मजा विद द बेस्ट ऑफ बॉलीवुड प्लेइंग ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।

0: निशान।
1: ओ तैयब टेल मी हाउ हाउ, तैयब टेल मी हाउ हाउ, ओ लड़की तेरी ताजमहल सी हम करे वाओ वाओ।

0: इफ वीकेंड वाज अ गाय,
1: वो आ गया, देखो वो आ गया।
0: इफ वीकेंड वाज अ गर्ल, इफ वीकेंड वाज अ फिल्मी डायलॉग,
2: स्वागत नहीं करोगे आप हमारा।
0: एंड इफ वीकेंड वाज एन ऐप,
3: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
4: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
5: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
6: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
0: How to make best of weekends that travel faster than light. Tune into our Musty Weekends on Radio Musty 24/7 Live, the perfect recipe for you to unwind, keeping body entertainment close to you, anywhere, anytime. Just

0: कुछ पुरानी धुने, कुछ भूली बिसरी यादें,
1: किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार,
0: कोई आवाज, कोई साज। सिनेमा की दुनिया के किस्से रुलाते, हंसाते, उदासी भरे, खिलखिलाते किस्से। समर के साथ रेडियो मसी 24/7 लाइव पर लेजेंड्स फिर से।
2: इट्स द बेस्ट ऑफ बॉलीवुड प्लेइंग ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। हैव अ मस्ती भरा वीकेंड।
3: हुआ मुसाफिर।

you know that I know how to do. I don't want

0: ਸਾਹਿਬ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਗੇਮ ਜੈ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਸਾਰੂ ਜੈ
1: No talking allowed. Sirf music bolega. Back to back gaane only on Musti Music Cafe.
2: Radio Musti 24/7 live, a part of Musti Media Network Singapore.
3: Check it out.
4: रात अकेली है तो क्या, हम तो आपके साथ हैं।
5: जोश में रहो।

0: सैटरडे नाइट का प्लान, पार्टी, कॉन्सर्ट या फिर भजन बैठक, जिनकी भजन बैठक में हजारों लोगों को एक साथ गाने सेलिब्रेट करने का एक नया एक्सपीरियंस दिया, जिनका जिक्र प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने मन की बात में किया, अब वो आ रहे हैं सिंगापुर। भजन जैमिंग विद बैकस्टेज सिब्लिंग्स राघव एंड प्राची। गाएंगे वो, गाएंगे आप सोलफुल भजन से सूफी और नॉस्टैल्जिक फेवरेट्स तक। 26 सितंबर, एंगेज थिएटर 2, सनटेक सिंगापुर। भजन जैमिंग विद बैकस्टेज सिब्लिंग्स। टिकट्स ऑन सिस्टिक। बुक नाउ। फॉर मोर डिटेल्स कॉल 9866-7144।
1: इट्स अ मस्ती पार्टनर इवेंट।
2: रात अकेली है
3: तो क्या हम तो

0: रात अकेली है तो क्या, हम तो आपके साथ हैं। जोश में रहो,
1: हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ, हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ।
2: Don't miss exciting offers on healthy snacks and Crushable premium nuts at Velocity Novena Square, kiosk number 12, 11th to 25th September. शाम की चाय हो, ऑफिस का ब्रेक हो या लेट नाइट बिंज वॉचिंग,
1: हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ, हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ।
2: हेल्दी मंचिंग का परफेक्ट पार्टनर अब सिर्फ एक क्लिक दूर।
3: जीजी
2: Crushable nuts only on ggmartonline.com. Premium cashews, California almonds, pistachios, pumpkin seeds, makhana और भी बहुत सारे होलसम हेल्दी ऑप्शंस।
3: जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर।
0: रात अकेली है तो क्या, हम तो आप

कत्ल करती हैं निगाहें कि दिल को खबर ना हो, जख्म देती है ऐसा कि दर्द का असर ना हो। हमने समझा था इश्क मोहब्बत को ही ख्याल दिल, लगता है डर बस इतना वो मेरा हम शक्ल ना हो।

0: भी बाकी है, मगर अभी रात अकेली है।
1: राधा कृष्ण, हमारे भारत में हर प्रेमी को श्री कृष्ण और प्रेमिका को राधा जी के रूप में देखा जाता है।

नहीं रहना, मुझे घर पे नहीं रहना, आज तेरे नाल मेरी सारी शाम गुजरनी नहीं, आज मुझे दुनिया की सुननी, मुझे तो है बस अपनी ही करनी।

0: रात अकेली है,
1: रात अकेली है तो क्या, हम तो आपके साथ हैं।
2: जोश में रहो।
3: अजय डोंट माइंड, लेकिन इतना अच्छा मौसम है और तुम इन बीमारियों के अलावा और कुछ नहीं सोचता। गुलफाम साहब के फैन हो, कोई शायरी वायरी नहीं आती क्या?
4: बिल्कुल आती है, सुनाओ।
3: सुना।
4: अर्ज है, दवा भी काम ना आए कोई दुआ न लगे, दवा भी काम ना आए कोई दुआ न लगे, मेरे खुदा किसी को प्यार की हवा न लगे। आदाब।

इसे देखो, दिल की धुनी रमाता। अरे ये मंदिर नहीं है, शिवाला नहीं है, हसीनों से कह दो कहीं और जाएं। मेरा दिल है दिल, धर्मशाला नहीं है।

फूल खिलते हैं, बहारों का समा होता है, ऐसे मौसम में ही तो प्यार जवां होता है। दिल की बातों को होंठों से नहीं कहते, ये फसाना तो निगाहों से बयां होता है।

0: 怎样？怎样？
1: जादू है नशा है और गानों से मदहोश करने के लिए हम है ना
2: रात।

0: की शुरुआत शांति और श्रद्धा के साथ भक्ति प्रेरणा और सुकून भरे गीत सुनिए रेडियो मस्ती 24/7 पर मस्ती पे भक्ति सुबह 6 बजे।
1: तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने पर है, उसके फल पर नहीं। Focus on doing your duty without being attached to the results.

हर सुबह एक नई शुरुआत है, मन में शांति हो तो दिन अपने आप सुंदर बन जाता है। आप सुन रहे हैं मस्ती पे भक्ति, रेडियो मस्ती 24/7 पर।

की पहली रोशनी के साथ अपने मन को भक्ति और प्रेरणा से रोशन कीजिए। आप सुन रहे हैं मस्ती पे भक्ति रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर।

तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने पर है, उसके फल पर नहीं। फोकस ऑन डूइंग योर ड्यूटी विदाउट बीइंग अटैच्ड टू द रिजल्ट्स।

की पहली रोशनी के साथ अपने मन को भक्ति और प्रेरणा से रोशन कीजिए। आप सुन रहे हैं मस्ती पे भक्ति रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर।

हर सुबह एक नई शुरुआत है, मन में शांति हो तो दिन अपने आप सुंदर बन जाता है। आप सुन रहे हैं मस्ती पे भक्ति, रेडियो मस्ती 24/7 पर।

0: क्या गाना है, दिल का रिश्ता बड़ा ही प्यारा है और कितना पागल ये दिल हमारा है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, हैप्पी मंडे एंड फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, कैसा गया आप सभी का वीकेंड? डिड यू एक्चुअली मैनेज टू रिलैक्स, या वीकेंड अभी भी ये काम करना है वो काम रह गया एंड ऑल दोस थिंग्स, बेसिकली जैसे कि फुर से निकल जाता है, इस बार भी निकल गया। Either way, weekend officially over ho chuka hai. Monday is here and I know Monday mornings have this terrible reputation ki alarm bajta hai and suddenly you are like, itni jaldi Monday kaise aa gaya? But you know, sabse pehle to welcome aap sabhi ko. This is the morning show, yes. And maybe Monday always doesn't need this huge new week, new me, let's conquer the world wala pressure jo hai. जरूरी नहीं है कि वही हो। समटाइम्स अ गुड मंडे कैन सिंपली मीन कि भाई स्टार्ट वेयर यू आर, एक कप चाय या कॉफी, वन थिंग एट अ टाइम, थोड़ा सा म्यूजिक एंड देन जस्ट गेट मूविंग। यू डोंट हैव टू फिगर आउट कि एंटायर वीक जो है सुबह सुबह 7:06 पे मुझे सब कुछ पता होना चाहिए, सब कुछ प्लान होना चाहिए। एंड व्हाइल यू डू दैट आई एम राइट हियर विद यू। गुड मॉर्निंग सपना जी। भाई मैं अंतरा अगेन आपके साथ यहाँ पर, वन मोर टाइम आई एम गोइंग टू बी योर मंडे मॉर्निंग डिजिटल न्यूज़पेपर ऑन रेडियो। वील कैच यू अप ऑन व्हाट्स हैपनिंग अराउंड अस, नेशनल इंटरनेशनल सिंगापुर स्पोर्ट्स टेक ग्लोबल अपडेट स्टोरीज दैट मैटर एंड अ फ्यू दैट विल सिंपली मेक यू गो अच्छा ये भी हो रहा है। एंड ऑफकोर्स गुड म्यूजिक इज गोइंग टू बी देयर, क्योंकि गानों के बिना तो हमारा कैसे ही चलेगा। न्यूज भी चाहिए, अपडेट्स भी चाहिए और बीच बीच में बॉलीवुड का डोज भी, बिल्कुल वो भी नॉन निगोशिएबल है। सो वेर एवर यू आर लिसनिंग फ्रॉम, getting ready for work, या फिर किचन में काम कर रहे हो, या फिर स्कूल रन, whatever, commute में हो, breakfast बना रहे हो, you have already reached your desk, maybe some of them, just like me, like I am here. Good morning to you, and you are not doing the Monday alone. This is me, Antra, this is the morning show. चलिए धीरे धीरे newspaper खोलते हैं, लेकिन उससे पहले गाने बिल्कुल आने देते हैं। Good morning.
1: Radio Musty 24/7 Live, a part of Musty Media Network Singapore.

0: सैटरडे नाइट का प्लान, पार्टी, कॉन्सर्ट या फिर भजन बैठक। जिनकी भजन बैठक में हजारों लोगों को एक साथ गाने सेलिब्रेट करने का एक नया एक्सपीरियंस दिया, जिनका जिक्र प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने मन की बात में किया, अब वो आ रहे हैं सिंगापुर। भजन जैमिंग विद बैकस्टेज सिब्लिंग्स राघव एंड प्राची। गाएंगे वो, गाएंगे आप सोलफुल भजन से सूफी और नॉस्टैल्जिक फेवरेट्स तक। 26 September, Engage Theatre 2, Suntec, Singapore. Bhajan Jamming with Backstage Siblings. Tickets on Sistic. Book now. For more details, call 9866-7144.
1: It's a Masti Partner event.
2: Healthy khao, protein khao. Healthy khao, protein khao.
3: Don't miss exciting offers on healthy snacks and Krishival premium nuts at Velocity Novena Square, kiosk number 12, 11th to 25th September. Shaam ki chai ho, office ka break ho, ya late night binge watching.
2: Healthy khao, protein khao. Healthy khao, protein khao.
3: Healthy munching ka perfect partner. Aap sirf ek click door.
4: GG.
3: Krishival nuts only on ggmartonline.com. Premium cashews, California almonds, pistachios, pumpkin seeds, makhana और भी बहुत सारे होलसम हेल्दी ऑप्शंस।
4: जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर।

वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग रेडियो मस्ती 24/7 ऑन ट्रॉप के साथ 7 बजकर हो चुके हैं यहाँ पर 17 मिनट। दिस इज द मॉर्निंग शो एंड यहाँ पर बहुत ही एकदम ताजा ताजा हमारी नई नई लिसनर जो है उन्होंने ज्वाइन इन किया है, नाम है इनका रक्षा। एंड यस, आई नो रक्षा दैट यू आर करेंटली इन द एक्सप्लोरेशन मोड एंड आप समझ रहे हो कि क्या है, कैसे करता है। जैसे इंडिया में आप रेडियो सुनते थे ना, बिल्कुल वही वाला फील है, बट थोड़ा सा एडवांस्ड वर्जन। वी आर ऑन ऐप सो दैट आप कहीं पर भी जाएं इस दुनिया भर में, ठीक है, मस्ती मीडिया 24/7 का ऐप हमेशा आपको अपने वैरायटी ऑफ तरीकों से इन्फोटेन और एंटरटेन्ड रखे। वेल, फिलहाल सुबह सुबह का ये मंडे मॉर्निंग का जो हमारा शो है वो एकदम डिजिटल अखबार के जैसे है, सो वर्ल्ड अपडेट्स और ये सारी चीजें तो होंगी ही होंगी, बट आई नो द पर्पस विद विच यू हैव ट्यून्ड इन वो भी होगा। लेकिन फिलहाल के लिए चलते हैं सीधा हमारी आज की पहली खबर की ओर। एंड वन समथिंग everybody in Singapore is talking about the haze, it is, that is right. Air quality jo hai, it worsened again on Sunday, kal ki date mein, with the central, eastern and the western regions entering the unhealthy PSI ka range at different points. Around 6 a.m. Sunday, ko the 24-hour PSI reached 123 in the central Singapore, 105 in the west and 102 in the east. But here's the better news. जो है आज सुबह कंडीशंस थोड़े से इम्प्रूव्ड रहेंगे, दैट्स आल्सो द फोरकास्ट। एंड या बाकी जो है मॉडरेट रेंज पे वापस से चले गए हैं, बट आगे आगे क्या होगा नोबडी नोज। इसका मतलब ये नहीं है कि इसकी स्टोरी खत्म हो गई है। एनईए जो है वो ये कह रहे हैं मॉडरेट टू डेंस स्मोक प्लूम्स जो है आर स्टिल बीइंग सीन फ्रॉम द फायर्स इन कालीमंतान एंड सदर्न एंड सेंट्रल सुमात्रा, एंड द स्मोक फ्रॉम सुमात्रा हैज बीन ऑब्जर्व ड्रिफ्टिंग टूवर्ड्स सिंगापुर विद विंड्स विच आर कंटिन्यूइंग टू ब्लो लार्जली फ्रॉम द साउथ ईस्ट, देयर इज स्टिल अ रिस्क ऑफ हेज अफेक्टिंग सिंगापुर। सो वेल, जब बाहर निकले बहुत सारी दूसरी चीजों के साथ साथ पीएसआई का जो है और हेज का कंडीशन भी देखकर बिल्कुल अपना जो है बाहर का प्लान सेट करें। फिलहाल यहां का प्लान सेट है दैट अलोंग विद ऑल द खबर्स व्हिच आई हैव गॉट फॉर यू दिस मॉर्निंग, वी विल हैव रियली रियली गुड सॉन्ग्स। कमिंग अप नेक्स्ट इज अरिजीत सिंह की आवाज फ्रॉम द साउंडट्रैक ऑफ हॉलिडे इज दिस वन। गुड मॉर्निंग।

0: झुमका। We are Radio Masti 24/7 live, keeping you connected Bollywood style anywhere, anytime.
1: चलिए खबरों को सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए यहाँ पे गुड मॉर्निंग रेडियो मस्ती 24/7 मैं अंतराब के साथ और यहाँ पर चल रहा है द मॉर्निंग शो 7:36 में जो है हेज से बढ़ते हुए समथिंग विच इज डेफिनेटली गोइंग टू ब्राइटन अप मंडे मॉर्निंग का मूड। भाई टीम सिंगापुर के लिए व्हाट अ स्टार्ट एट द एशियन गेम्स। भाई 20th एशियन गेम्स जो है वो जापान में ऑफिशियली आईची नागोया 2026 एशियन गेम्स दे आर गोइंग टू रन टिल 4th of October। दे हैव started and interestingly sare events sirf Nagoya mein nahi ho rahe hain, they are spread across Aichi and other parts of Japan as well. Singapore ke swimmers and divers, for example, they are going to compete in Tokyo and Singapore has already medals on board. By the way, first up 20-year-old Zian Lojo hai who opened up Singapore ka medal account with a joint bronze in wushu in women's Tai Chi Chian combined event and this one particularly काफी इसकी बात हो रही थी because she competed at the previous Asian Games जो है and this time Asian Games में she secured the bronze medal. Now then came the fabulous swim from Gan Cheng Hui. I hope I'm pronouncing the name correct. If not, apologies. She took the silver in the women's 1500 meter freestyle. Singapore का सबसे पहला first ever silver in this women's Asian Games event. Well. And सिर्फ मेडल्स नहीं है, दो नेशनल रिकॉर्ड्स भी एक रेस में बने। हर 1500 मीटर टाइम वॉज द न्यू सिंगापुर रिकॉर्ड एंड इवन हर 800 मीटर का स्प्लिट ऑफ जो टाइम हुआ ब्रोक द एग्जिस्टिंग नेशनल मार्क। तो एक रेस में सिल्वर भी और दो नेशनल रिकॉर्ड्स भी, क्या बात है। आई थिंक परफेक्ट मोटिवेशन मंडे मॉर्निंग के लिए। एंड देन देयर इज टिफनी थियो इन मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स विद अ लिटिल बिट ऑफ हिस्ट्री ऑफकोर्स अटैच्ड। MMA इज मेकिंग इट्स डेब्यू एज अ मेडल स्पोर्ट एशियन गेम्स में इस बार एंड टिफनी जो है हैज ऑलरेडी बिकम सिंगापुर्स फर्स्ट एवर एशियन गेम्स मेडलिस्ट इन MMA बाय रीचिंग द विमेंस ट्रेडिशनल 60 kg का सेमीफाइनल्स। सो वेल, अब बाकी जैसे जैसे होता जाएगा वैसे वैसे हम आगे आपको यूं ही अपडेट्स देते जाएंगे। आगे चलकर हम आपको इंडिया के मेडल्स का भी टैली अपडेट देंगे, लेकिन फिलहाल इन सभी बातों के साथ साथ बीच बीच में जैसे कि मैंने कहा गाने भी आते रहने चाहिए एंड ऑल्सो ऑफकोर्स द कॉन्टेस्ट्स which we are talking about unke bhi zikr hote rehne chahiye so that you know that how to win it. Do you want to win something? Then stay tuned to Radio Masti 24/7. Good morning.

0: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
1: अगर हम सबकी जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। मस्ती मीडिया एकेडमी इज नाउ ओपन फॉर एडमिशंस। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for application form.
2: Namaste behno aur bhaiyo, main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.
3: It already feels like मस्ती वो हिसाब की चॉइस के हिसाब से, but it's okay. If morning को आपका एक गाना जो है मूड बदल सकता है तो most welcome. Sunil जी all the way from India who has tuned in wants this song, so we will play this song and a song के उस पार जो है get ready everyone, क्योंकि I think contest के सिलसिले को बिल्कुल यहाँ पर शुरू कर देना चाहिए. Good morning.

0: We are Radio Masti 24/7 live, keeping you connected Bollywood style, anywhere, anytime.
1: Good morning and welcome back. Radio Masti 24/7 and Antra Abke Saad. This is, of course, the morning show. But morning show pe har cheez ki update ke saath saath Singapore mein kab kahan kya ho raha hai, kaun se important events ho rahe hain, wo bhi janna utna hi zaruri hai. And uske saath saath jo hai, ek chhota sa contest khelna bhi zaruri hai, so that you can start your Monday morning by winning, by actually standing a chance to win something. Hai na? Perfect, perfect. So, well, Monday morning mein thoda sa भक्ति, थोड़ा सा बॉलीवुड और सूफी म्यूजिक का तड़का लगा देते हैं, एटलीस्ट बात करके तो. एंड आई एम रियली रियली क्यूरियस अबाउट दीज बैक स्टेज सिबलिंग्स. ओके, आई वॉन्ट टू नो देयर स्टोरी इवन मोर देन एवर. हालांकि मुझे हल्का सा बैकग्राउंड पता है, लेकिन फिर भी आई एम टॉकिंग अबाउट राघव एंड प्राची, द बैक स्टेज सिबलिंग्स. दे आर कमिंग टू सिंगापुर विद देयर भजन जैमिंग बैटर. नाउ इफ यू आर इमेजिनिंग कि एकदम फॉर्मल कॉन्सर्ट्स जैसे होते हैं, ये सब है जहां पे ऑडियंस एकदम चुपचाप बैठी हुई है, एंड द आर्टिस्ट इन द स्टेज जो है वो परफॉर्म कर रहे हैं, एब्सोल्युटली नॉट. दिस वन इज मेंट टू फील लाइक अ प्रॉपर म्यूजिकल बैठक. चाहे वो यू नो सूफी फेवरेट्स हो, सोलफुल भजन्स हो, नॉस्टैल्जिया हो, सबसे अच्छी बात जैसे ये कहते हैं गाएंगे वो और गाएंगे आप एकदम साथ साथ. दैट्स रियली द वाइब ऑफ अ बैक स्टेज सिबलिंग्स इवनिंग, एंड द स्टेज एंड द ऑडियंस बिकम द पार्ट ऑफ द सेम म्यूजिकल एक्सपीरियंस. एंड यस भाई, आप बिल्कुल सिस्टिक जाकर टिकट अपनी बिल्कुल बुक करा सकते हैं. इट इज गोइंग टू हैपन दिस वीक सैटरडे 26th ऑफ September. Now, Masti Media 24/7 पर, yes, this is the time जहां पर आप tickets जीत सकते हो यहां पर. And simple सा सवाल है मेरा, where are the backstage siblings? इनका जो show होने वाला है, perform कहां करने वाले हैं in Singapore? I have two options for you. A, Esplanade, या फिर B, Engage Theatre 2, Suntec. अभी मैंने आंसर तो वैसे नहीं बताया है इसका, बट आई एम श्योर दैट आपको पता होगा. वेयर आर द बैक स्टेज सिबलिंग्स परफॉर्मिंग इन सिंगापुर? ए, एस्प्लेनेड, या फिर बी, एंगेज थिएटर 2, सनटेक. अपने अपने जवाब जो है व्हाट्सएप कर दीजिए मुझे 9151896 3 पर. एंड या यू नेवर नो, यू कुड बी हेडिंग टू दिस शो जस्ट यू नो आज के दिन में. मे बी मंडे इज द परफेक्ट डे फॉर इट. स्टे ट्यून्ड टू मस्ती मीडिया 24/7. आई थिंक दिस इज द बेस्ट थिंग विच कैन हैपन, है ना. और बिल्कुल यहाँ पे बात खत्म नहीं होती है, फिलहाल गाने की तरफ चलते हैं, एंड देन वी विल बी राइट बैक ऑन द मॉर्निंग शो. गुड मॉर्निंग.
0: सैटरडे नाइट का प्लान, पार्टी, कॉन्सर्ट या फिर भजन बैठक. जिनकी भजन बैठक ने हजारों लोगों को एक साथ गाने सेलिब्रेट करने का एक नया एक्सपीरियंस दिया, जिनका जिक्र प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने मन की बात में किया, अब वो आ रहे हैं सिंगापुर. भजन जैमिंग विद बैकस्टेज सिबलिंग्स राघव एंड प्राची. गाएंगे वो, गाएंगे आप, सोलफुल भजन से सूफी और नॉस्टैल्जिक फेवरेट्स तक. 26 सितंबर, एंगेज थिएटर 2, सनटेक सिंगापुर. भजन जैमिंग विद बैकस्टेज सिबलिंग्स. टिकट्स ऑन सिस्टिक. बुक नाउ. फॉर मोर डिटेल्स कॉल 9866-7144.
2: मस्ती पार्टनर इवेंट.

0: खाओ।
1: डोंट मिस एक्साइटिंग ऑफर्स ऑन हेल्दी स्नैक्स एंड क्रिशिवल प्रीमियम नट्स एट वेलोसिटी नोवीना स्क्वायर कियोस्क नंबर 12, 11th टू 25th सितंबर। शाम की चाय हो, ऑफिस का ब्रेक हो या लेट नाइट बिंज वॉचिंग,
0: हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ, हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ।
1: हेल्दी मंचिंग का परफेक्ट पार्टनर अब सिर्फ एक क्लिक दूर,
2: जीजी
1: क्रिशिवल नट्स, ओनली ऑन ggmartonline.com। प्रीमियम कैश्यूज, कैलिफोर्निया आमंड्स, पिस्ताचियोस, पम्पकिन सीड्स, मखाना और भी बहुत सारे होलसम हेल्दी ऑप्शंस।
2: जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर।